0: क्या। लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू।
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे।

ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

हत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

0: रेडियो जी टीवी HD पर देखिए तुम से तुम तक।
1: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
0: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्य भट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
1: मैं ही राजीव भाटिया।
0: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12th to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner, Leica Radio.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा

खरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं, पास अगर तू आ जाए।

0: लता जी की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना, फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली, जिसमें रविंद्र जैन का म्यूजिक था, और उससे पहले राजकुमार फिल्म का गाना जिसमें भी थी लता जी की आवाज, शम्मी कपूर की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, और लीजिए दो सुपरहिट गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां कहीं पर भी हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, आपका साथ देने के लिए हाजिर आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक मेरे आने से पहले ही पहुंच जाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो जरूर हम उन पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपको याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, देन आज आपको 1 पाउंड के बदले में 127.75 भारतीय रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप 1000 पाउंड से ज्यादा भिजवाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है एवरी वीक, और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा भिजवा रहे हैं मनी भारत तो आपको मिल सकता है 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the YONO SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.

0: जी मुझे लगता है आपके पास भी कोई फालतू की गल नहीं होगी, आप सब भी बिल्कुल मजे में होंगे और इस प्रोग्राम को हमारा साथ देकर सुन रहे होंगे। और जो अभी अभी हमारा साथ दे रहे हैं, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूँ ऋतु शर्मा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपके भरने से पहले आपको हम बताते चले कि भाई आप सबका हमें इतना प्यार मिलता है कि क्या बताऊं, आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, चलिए उन पर एक नजर डाल ली जाए। हरीश रुदा हमारे साथ हैं, हमारे रेगुलर लिस्टनर हैं। इमरान स्वागत है आपका इस शो में। वियाना में अनिल सोनी जी सुन रहे हैं, हमारे शेखर जी हैं, हमारे राजेश जी हैं हमारे साथ, थैंक यू। और आप कहते हैं कि क्योंकि ये महेंद्र कपूर वीक है तो आपने गाना सजेस्ट किया है। अब देखती हूँ कौन सा गाना बजता है, क्योंकि हमारे जो हर साथी हैं कोई ना कोई गीत बजाते हैं, अगर नहीं बजा होगा तो ज़रूर कोशिश रहेगी। इसके अलावा हंसा बोरा जी, मितुल पटेल हमारे साथ हैं, हरीश खत्री जी स्वागत है आपका, अर्जुन जी, सहज जी, तोची जी, प्रज्ञा, यस मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ होती हैं, थैंक यू सुनीति प्यार के लिए, थैंक यू अरुणा जी। जासू जी कहती हैं आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता है, और कहूँ क्या जासू जी, आपका ये मैसेज पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है, थैंक यू, स्वागत है। विनोद जी हमारे साथ है, दिनेश सॉरी, थैंक यू, दो बैक टू बैक गाने आपको पसंद आए, और कहते हैं कि जो तो हम आपका सुनते हैं, आपका नाम तो जानते हैं, लेकिन आपसे मिलने की तमन्ना है। मैं भी जरूर चाहती हूँ आप सबसे मिलना, और देखिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी आपसे मुलाकात जरूर होगी, थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में दिनेश जी। संतोष जी, नरेंद्र बागिया हमारे साथ हैं, मृदु जी थैंक यू, और ये कौन है, सीमा हयाती प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सीमा। संध्या भावसर कहती हैं बाहर का मौसम ऋतु अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता है गीतों का मौसम अच्छा होगा। ये तो आपने मेरा डायलॉग बोल दिया। लेकिन बाहर का मौसम इतना बुरा नहीं है फिलहाल, हाँ दोपहर के बाद बुरा हो सकता है, लेकिन गीतों का मौसम शानदार ही रहेगा, थैंक यू साथ देने के लिए। राजीव पटेल जी कहते हैं गार्डन में काम करते करते मैंने अपनी मसल पुल कर ली है। तो भाई गार्डन में काम बहुत ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है, जब हम गार्डन में जाते हैं ना तो बस जुट जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये हमें हर्ट भी कर सकता है। बड़े बड़े पेड़ों को पकड़कर उखाड़ने में मैं तो लग जाती हूँ, और बाद में जब काम खत्म करके जाती हूँ तो लगता है अरे मर गए, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये हो गया वो हो गया। तो गार्डन में ध्यान से काम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा मिसेस पेके चियांग आप भी हमारे साथ हैं, मिसेस शेख, महेंद्र बजारिया, थैंक यू। मैसेजेस का सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताऊंगी, ये आपका प्यार है जिसने एक बार फिर से लाइका रेडियो नेटवर्क को नंबर वन बनाया है। जी हाँ, जो लेटेस्ट रजार फिगर्स आए हैं उसमें फिर से लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड नंबर वन पोजीशन पे है ग्रेटर लंदन में। और आपको बता दें कि गोल्ड तो हमारा वो रेडियो है जिसे आप सब सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा सुना जाता है, ये लेटेस्ट रजार फिगर्स ने बताया है। तो ये आपका प्यार ही तो है, तभी तो आप हमें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो बस इसे बनाए रखिए, या फिर इसे दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाते रहिए, हम भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपको एंटरटेन करते हैं करते रहें।
1: ये है
2: लाइका रेडियो,
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लीजिए, हमारे जितने भी मोहम्मद रफी के फैन हैं उनके नाम पर जाता है ये गाना। लता जी और रफी साहब की आवाज में 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से लिया था, जिसमें आनंद जी कल्याण जी यानी कि कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और इस फिल्म को बनाया था प्रकाश मेहरा ने। और प्रकाश मेहरा ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये फिल्म भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। पर लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के करियर में बहुत बड़ा बूस्ट जो आया वो प्रकाश मेहरा की फिल्मों से आया, और ये बात सच है। जो एक के बाद एक अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट हुई वो सब प्रकाश मेहरा ने ही डायरेक्ट की थी। और उनकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की यादें में हम प्रकाश मेहरा को ही याद करने वाले हैं, तो यस अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गीत आपको सुनने को मिलेंगे।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.
0: जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ आपके साथ, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और एक डेडिकेशन भी आई है। ये मुझे भेजा है, किसने भेजा है, बहुत सारे नाम है। आपने लिखा है कि कैन यू प्लीज मेंशन हैप्पी एनिवर्सरी टू माय डैड दिलीप एंड मम्मी उर्मिला, और प्लीज प्ले ए नाइस सॉन्ग उन दोनों के लिए। और किन की तरफ से है ये गाना जाता है, आरुष, ऐशी, अंकल भावेश, जागृति और जय। आप सभी विश करना चाहते हैं अपने डैड दिलीप और मम्मी उर्मिला को, और उसके अलावा भावेश जी, जागृति एंड जय। आई एम श्योर कि मैंने आपके नाम सही लिए होंगे, आरुष एंड आयशी। तो चलिए, हमारी ओर से भी दिलीप एंड मम्मी उर्मिला आपको एनिवर्सरी की ढेरों बधाइयां, और ये गाना कुमार शानू की आवाज में आपको ही डेडिकेट करते हैं।
2: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@laikamedia.co.uk. Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: before their final day showdown at Parkhead. They haven't won the title since 1960. John Robertson is Hearts' all-time leading goal scorer.
1: Seize the day, seize the chance. What an opportunity to every single one of them become legends of the football club. It's just another title for Celtic. That's all it is. Be 14 and 15 for them. But for Hearts, this is unique. This is an opportunity that doesn't come along very often.
0: And Eurovision's final takes place in Vienna this evening. It'll feature a medley of classic songs to celebrate 70 years. From Sky News, I'm Imani Rana.
2: Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
3: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की. और आज मौसम कुछ मिला जुला है. बादल भी हैं, धूप भी है, लेकिन शाम आते आते बरसात भी शामिल हो जाएगी. और मौसम भी ठंडा है. आज लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्रीज तक रहेगा, मैनचेस्टर में 13 डिग्रीज और मिडलैंड्स में टेम्परेचर 12 डिग्रीज के आसपास तक ही जाएगा.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. ये है Leica Radio. Leica
3: Radio. Ritu Sharma. सही सुना आपने, मैं रितु शर्मा ही हूँ इस प्रोग्राम में आपके साथ दोपहर के 1 बजे तक. और प्रोग्राम के सेकंड आवर में होती हैं यादें. और आज की यादें में हम बात करने वाले हैं जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के बारे में. आज नहीं, कल उनकी पुण्यतिथि है. कुछ गाने, कुछ बातें.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma.

0: मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लता जी की आवाज में आप सबका फेवरेट गाना हमारी आंटी जी और मिसेस पे के चियांग कहते हैं हमारे नाम कीजिए। चलिए मैंने आपके नाम किया और उससे पहले लावारिस फिल्म का गीत किशोर दा की आवाज में अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली। क्या हिट हुआ था ये गाना जब ये आई थी फिल्म, और गाना ही नहीं फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी। और इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने। और न सिर्फ ये दोनों फिल्में, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें अमिताभ बच्चन हैं और अमिताभ बच्चन नहीं भी हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट किया है प्रकाश मेहरा ने और वो फिल्में बहुत हिट हुई हैं। आपने फर्स्ट वाले अवर में गीत सुना था हसीना मान जाएगी बेखुदी में सनम, उस फिल्म को भी प्रकाश मेहरा ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन क्योंकि इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए जो फिल्में डायरेक्ट की वो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के डायरेक्टर हैं। या ये कहूं कि अमिताभ बच्चन को स्टार सुपरस्टार बनाने की जो शुरुआत थी वो प्रकाश मेहरा ने ही की थी। आज उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। कल उनकी पुण्यतिथि है। कल के दिन बहुत ही छोटी सी उम्र में, जब सिर्फ 69 ईयर्स के थे, 2009 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का सारा क्रेडिट जाता है प्रकाश मेहरा को। वैसे तो इनकी बर्थडे अक्टूबर में आती है। यूपी में ये पैदा हुए थे और शुरुआत में इन्होंने एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ साथ जो जंजीर फिल्म थी वो इनके भी करियर का टर्निंग पॉइंट था। कैसे था, कैसे इन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म में साइन किया, सब बातें बताऊंगी। लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: मैं आपको याद दिलाऊंगी कि अगर भारत पैसा भेजना चाहते हैं तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.75 भारतीय रुपए। और इसके अलावा अगर आप 1000 पाउंड से ज्यादा भारत भिजवाते हैं तो आपको मिलेगा 75 पाउंड का एक वाउचर, और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा भिजवाते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: आशा जी की आवाज में जंजीर फिल्म से था ये गाना, जो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के करियर की एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने उनके करियर को, उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। लेकिन इस फिल्म को बनाने के पीछे प्रकाश मेहरा को बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये प्रकाश मेहरा के जीवन का बड़ा ही मशहूर किस्सा, या कहूँ एक यादगार दिलचस्प किस्सा है। जब सलीम जावेद ने इस कहानी को लिखा और प्रकाश मेहरा को चुना इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, तो प्रकाश मेहरा चाहते थे कि ये फिल्म ऐसी बने कि उनकी गाड़ी चल निकले, क्योंकि उससे पहले उनका करियर भी बहुत डावाडोल था। अब उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो एक कड़क और गंभीर पुलिस वाले का किरदार निभा सके। इंस्पेक्टर विजय, आपको याद होगा, जो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो बस प्रकाश मेहरा ने सोचा कि किसे इस फिल्म के हीरो के रूप में लिया जाए। सबसे पहले उन्हें याद आया राजकुमार का नाम, कड़क आवाज, दमदार पर्सनैलिटी। पहुंच गए राजकुमार के पास, लेकिन भाई साहब, राजकुमार ने मना कर दिया फिल्म में काम करने से। जानते हैं क्या रीजन था? क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि उन्हें प्रकाश मेहरा के बालों के तेल की खुशबू पसंद नहीं आई। अब ये मजाक है या सच, ये मैं नहीं जानती, लेकिन कहने वाले ऐसे कहते हैं। और सिर्फ इस बात के लिए राजकुमार ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया। बताइए, उसके बाद वो धर्मेंद्र के पास पहुंचे। धर्मेंद्र को कहानी पसंद थी, लेकिन धर्मेंद्र उस समय बहुत बिजी चल रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा, और उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब वो पहुंचे उस जमाने के सुपरस्टार देवानंद के पास। उन्होंने कहा देव साहब से कि भाई आप इस फिल्म में काम करेंगे, तो देव साहब ने कहानी सुनी और कहा, अरे इस फिल्म में तो रोमांटिक गाने ही नहीं है, कुछ लव सीन ही नहीं है। अगर आप इस फिल्म में कुछ रोमांटिक गाने डाल दें, कुछ लव सीन डाल दें, तो फिर मैं इस फिल्म को कर लूंगा। लेकिन प्रकाश मेहरा स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने देवानंद की बात को मानने से मना कर दिया। और आपको याद होगा कि इस फिल्म में एक या दो ही गाने हैं, ज्यादा गाने नहीं है। पूरी कहानी इंस्पेक्टर विजय के आसपास ही घूमती रहती है। और जब हर किसी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, तब प्रकाश मेहरा प्राण साहब के पास पहुंचे, जिन्होंने इस फिल्म में शेर खान का रोल किया था और वो तैयार हो गए थे। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अमिताभ बच्चन को ले लो, लोग उन्हें अभी फिलहाल तो पसंद नहीं कर रहे हैं दर्शक, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और थोड़े गंभीर भी दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस फिल्म को अच्छी तरह कर पाएंगे। और प्रकाश मेहरा ने इस रिस्क को लिया, क्योंकि इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी और एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। अमिताभ बच्चन पर अपना विश्वास दिखाया और अमिताभ बच्चन ने भी बिल्कुल जी जान लगाकर इस फिल्म में काम किया। और देखिए, जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो असर तो मिलता है। और देखिए ये फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और इस फिल्म ने ऐसी सफलता दिलाई कि उसके बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी तो जैसे जम गई। एक के बाद एक दोनों ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। ऐसी ही एक और हिट फिल्म का गीत सुनिए।
1: This is Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मैंने पागल।
1: इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी थी, यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी प्रकाश मेहरा थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ढेर सारी फिल्में बनाई हैं।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माई बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: दिस इज रितु शर्मा।
1: आज की यादें में हम प्रकाश मेहरा को ही याद कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था जंजीर का किस्सा कि किस तरह से उस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर जंजीर फिल्म बना ली, बहुत सारा कर्ज लेकर ये फिल्म बनाई, और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए तो जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया, और उनका कहना था कि जिस हीरो की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उस पर हम पैसा क्यों लगाएं? और प्रकाश मेहरा बहुत टेंशन में आ गए। उन पर इतना प्रेशर था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो तो दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा, बहुत सारा कर्ज लिया था इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन उन्हें विश्वास था और वो अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यार रिलीज तो करो, कम से कम देखो तो क्या होता है, और जैसे तैसे करके फिल्म रिलीज हुई। जानते हैं जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले 4 दिन सिनेमा घरों में सन्नाटा था। कहने वाले कहते हैं कि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, और प्रकाश मेहरा को लगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स सही कह रहे थे, वो बर्बाद हो गए। और इस टेंशन के कारण, इस तनाव के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें तेज बुखार आ गया, और बस वो कहीं नहीं गए, घर पर ही रहे। अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया और 4 दिन तक बाहर ही नहीं निकले। और जब 5वां दिन आया तो घर की घंटी बजी, नौकर ने दरवाजा खोला, सामने सलीम खान खड़े थे। प्रकाश जी से मिले और उनसे पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? प्रकाश जी बोले, बुखार है, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। सलीम खान प्रकाश जी से बोले, अरे भाई मुस्कुराओ, जरा घर से बाहर निकलो, खिड़कियां खोलकर देखो, आपका बुखार गायब हो जाएगा। थिएटर्स के बाहर लाठी चार्ज हो रहा है एडवांस बुकिंग की, खिड़कियां टूट गई हैं और लोग ब्लैक में टिकट खरीद रहे हैं। ये बात सुनकर तो प्रकाश मेहरा को यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत थिएटर की ओर भागे और उन्होंने टिकट खरीदा और बैठकर फिल्म देखी, और देखा कि अमिताभ बच्चन के हर एक डायलॉग पर लोग तालियां बजा रहे हैं। खास तौर पर जहां पर अमिताभ बच्चन प्राण साहब से कहते हैं, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऐसे डायलॉग सुनकर लोग जब तालियां बजा रहे थे, तब प्रकाश मेहरा को चैन में चैन आया, और उनको लगा कि उन्होंने जो अमिताभ बच्चन पर जुआ खेला, जो उन पर विश्वास दिखाया, वो गलत नहीं था। और देखिए उसके बाद तो दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई कि ढेर सारी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया, और आज ऐसी फिल्मों के कुछ गीत सुनवा रही हूँ। इनफैक्ट एक और गीत ऐसी ही सुपरहिट फिल्म का है जिसमें यही जोड़ी है, मतलब यही प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन।
3: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Leica Extra podcast update.
1: तो वो गाना सुनवाने से पहले आपको बता दें कि भाई Leica Extra का नया एपिसोड आ चुका है, और इस बार का टाइटल है इंडिया वीक शोकेस। होस्ट किया है अनुज राडिया ने, और जिसमें बात हो रही है Leica Radio Network आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम मई 26 टू मई 31st। तो भाई आप जरूर देखिए, बात कीजिए और सुनिए, और आपको बता दें कि ये अवेलेबल है Spotify, YouTube, Amazon और Apple पर।
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12 to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Leica Radio.
5: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
6: Presenting Bismil Ki Mehfil,
0: UK Tour 2026 live in London.
5: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
0: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
5: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
0: On Sunday, the 7th of June at Hackney Empire.
5: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Leicester, it's time to celebrate.
7: Ruud Millers brings you the ultimate 50 fest.
6: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
7: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
6: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
7: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
6: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
7: Ruud Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest, every shop. Shoppers a winner.
5: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
8: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
5: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
8: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
5: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you manoeuvre, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk।

0: आज प्रकाश मेहरा की बनाई हुई कुछ फिल्मों के बारे में बातें की। आज हमने उन्हें याद किया। आपको बता दें कि मसाला फिल्मों बनाने में माहिर थे प्रकाश मेहरा, लेकिन उसके साथ साथ फिल्मों में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और संगीत का सही तालमेल रखने में भी माहिर थे। हमेशा उनकी फिल्मों का संगीत सुपरहिट रहता था। बहुत सारी उनकी फिल्मों में कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक दिया है, बप्पी लहरी ने म्यूजिक दिया है, और उन्होंने न सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ बल्कि उस दौर के सुपर सितारे जैसे कि सुनील दत्त, फिरोज खान, विनोद खन्ना के साथ भी काम किया है। और जब उनका काम चल निकला तो उन्होंने मेहरा कॉरपोरेशन के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया और उन्होंने कई फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने भी लिखे हैं। यानी कि डायरेक्टर तो थे ही लेकिन अच्छे गीतकार भी थे। और आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद कल यानी कि 17 मई को 2009 में मुंबई में उनका निधन हो गया और उनके जाते ही लोग बहुत दुखी हुए। कहते हैं एक स्वर्ण युग का अंत हो गया, क्योंकि प्रकाश मेहरा न सिर्फ एक डायरेक्टर थे बल्कि एक विजनरी थे और उन्होंने ये समझा कि उस जमाने का युवा क्या चाहता है, किस चीज से परेशान है, और उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं आवाजों को उठाया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 109.87 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LEICA Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Yeah.
2: LEICA Radio.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच है और ये मैच दोपहर के 3 से स्टार्ट होगा। मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। LEICA Radio.
4: The wait is now over. The king of melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
4: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
4: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, LEICA Radio.
6: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
6: हमजा समोसास 3 for 10।
7: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
6: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
7: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
6: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
7: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN
6: while stocks last.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
10: गारंटेड
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
10: फोन 02085748410।
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
14: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: Mika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: तो चलिए बात कर लेते हैं मौसम की, और आज मौसम मिला जुला है। बादल भी हैं, कभी कभार धूप भी देखने को मिलेगी और हल्की बारिश भी होने की संभावना है। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्रीज तक रहेगा, मैनचेस्टर में 13 डिग्रीज और मिडलैंड्स में 12 डिग्रीज के आसपास।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: ये है
0: Leica Radio. Ritu Sharma.
1: सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा हूँ। एक बजे तक द ऋतु शर्मा शो में आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन। प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका स्वागत है। इस आवर में हम खेलेंगे थ्री वर्स गेम और सुनवाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, और पहले दो गाने बैक टू बैक।
0: Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma.

0: दोस्त, ये थी लता जी और मुकेश जी की आवाजें, सदाबहार गाना, जिसमें सदाबहार म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और उससे पहले जानी दुश्मन फिल्म का गीत आपको सुनवाया, जिसमें एक बार फिर से रफी साहब की आवाज थी, साथ में थी आशा भोसले, और म्यूजिक एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। आप सभी का एक बार फिर से इस शो में स्वागत है। आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं, और जिसमें कुछ मैसेज तो बहुत ही अच्छे तारीफ भरे हैं, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें खूब सारी तारीफ होती है। अब देखिए, इंसान में बुराई तो होती है, लेकिन कोई उन बुराइयों को अलग रख कर आपकी अच्छाइयों की तारीफ करे तो खुशी तो होती है। एंड आई लव दोज टाइप ऑफ मैसेजेस, सो थैंक यू। भिजवाते रहिए, आप हमारा साथ दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महेंद्र बाजारिया जी, संध्या जी, एलिंग से दिल, एजाज चैशम से, नॉर्थ हॉल से प्रकाश जी, और ये कौन है, ये है दीपिका वर्मा। ओहो, क्या बात है, आप भी सुन रही हो, लवली, थैंक यू। शर्फून, स्वागत है आपका। और ये कौन है, जिनका नाम है क्या, नाम है क्या, नाम है क्या, हाँ नाम है किशोर लाडवा जी, थैंक यू। आपको मजा आ रहा है, आप गाड़ी में प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। प्रज्ञा, थैंक यू। निर्मला, थैंक यू। रजिंदर राज जी, एनएसएस भोगल जी, स्लाव से रानी जी, और हमारे सारे साथी जो हमेशा ही बड़े प्यार के साथ साथ देते हैं। तो चलिए, तैयार है इस वाले आवर के लिए। इस आवर में आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनाऊंगी, और हम खेलेंगे थ्री वर्ड्स गेम भी। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं, हमेशा की तरह बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे से गीत से लिए मैंने, और ये जो गाना है ये 1971 की फिल्म का है, जिसमें एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। इस बार आवाज है लता जी और किशोरदा की। और पहला वर्ड है प्यारी, यस प्यारी। दूसरा वर्ड है हमारी, मैं नहीं प्यारी हमारी ठंडी, यस। वैसे यहाँ के लोगों को तो ठंडी कभी भी प्यारी और हमारी नहीं लगती है, लेकिन हमारे वर्ड्स ऐसे ही हैं, प्यारी हमारी ठंडी। कौन सा है ये गाना, अगर आपको पता चल गया है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरा अपना मैसेज भिजवाना।
1: व्हाट्सएप Leica Radio Midlands now on 07404 793 719।
0: तो चलिए एक बार फिर से वर्ड्स रिपीट कर दूं, मुझे भी हंसी आ रही है आज के वर्ड्स पढ़कर। पहला वर्ड है प्यारी, दूसरा वर्ड है हमारी, तीसरा वर्ड है ठंडी। कौन सा है ये गाना, 1971 की फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लता किशोर की हैं आवाजें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिलाते चलें कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिल सकते हैं 127.75 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा अगर आप 75 पाउंड का गिफ्ट वाउचर देना चाहते हैं तो आपको 1000 पाउंड से ज्यादा सेंड करने पड़ेंगे मनी, और अगर आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन चाहते हैं तो फिर ट्रांसफर कीजिए 2000 पाउंड या उससे ज्यादा SBI ब्रांच से, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Leica Radio. Leica Radio.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: 1965 की फिल्म वक्त से था ये गाना, जिसमें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें थी। और महेंद्र कपूर ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं ढेरों इस तरह के मीठे मीठे गाने गाए हैं।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो लीजिए, हमारा थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है और मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, और क्या कहूँ, सबने सही जवाब दिया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। और जिन्होंने आंसर दिए उनके नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। फरीदाबाद जी ने कह दिया है कि ब्लैक एंड व्हाइट के दोनों गाने मेरे नाम कह दीजिए। बिल्कुल आपके नाम और आपके साथ साथ उन सभी यंगस्टर्स के नाम जिन्हें हमारे गोल्डन ओल्डीज पसंद आते हैं। चलिए सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।

0: क्या कहेगा।
1: ये गाना सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, मुझे तो देखने में भी उतना ही प्यारा लगता है। देवानंद और नूतन की जो हल्की फुल्की छेड़छाड़ है ना इस गाने में, मजा आता है देखकर। एल जी बर्मन का कमाल का म्यूजिक था, जिसमें आवाजें किसकी थी, आशा नहीं, किशोर कुमार और लता जी की। और प्रज्ञा कहती है कि ऋतु ये गाना मेरे लिए छोड़ दो, मैंने आपको दे दिया ये गाना। और उसके अलावा जिन्हें भी ये गीत पसंद है, आप सभी के नाम पर जाता है ये गीत।
2: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Ritu Sharma.
1: बिल्कुल सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। सभी का स्वागत है इस शो में। और आज थ्री वर्ड्स गेम के बहुत सारे आंसर्स आए हैं और सभी ने बिल्कुल सही सही पहचाना है। तो दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाने से पहले बताती हूँ कि जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है मितुल पटेल, एजाज, दामिनी बेन, मनीषा शाह, उल्लास, नरेन पटेल, राजीव पटेल, नीलेश तन्ना, शुमिला मंगर, विनोद, स्मिता दास, अनिल मालदे, संध्या भावसर, महेंद्र बजारिया, तोची, रानी सुहानी, करसन पिंडोरिया, उषा खोड़ा, सहर, दिव्या जी, अमर जी, अयूब चौहान, किरण हैरो से, कुकी, एस एस भोगल जी। एंड ये किसने अभी अभी मैसेज भेजा है, हमारी यास्मीन बानो, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। तो आज के थ्री वर्स गेम वाला भी गाना सुनवाऊंगी, लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना हो जाए।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Okay, so wedding season is here, and for Indian ethnic outfits, all you need to do is visit Manivar in Southall. You'll find a bridal wear, including lehengas, skirt tops, and crop top sets, along with sherwanis and kurta sets for grooms and baratis. There are also outfits for kids and clothing for other special occasions. Visit Manivar Southall at 42 The Broadway, Southall, UB1 1PT.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Anika on Leica Radio.
2: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम कैसी हो तुम
3: खातून कौन थी
4: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस
3: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी इस हर पति एनिमल
5: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th May.
6: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.

0: Okay, so if you did not guess it, the artist of the week this week is the one and only, the stunning Madhuri Dixit. This, of course, is from film Dil To Pagal Hai. Taking you back to 1997 with this one, Koi Larki Hai.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Anika on Leica Radio.
2: इतना सस्ता डील देखा है कभी
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99
2: हमजा समोसास 3 for 10
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p
2: सुहाना मसालास 2 for 150 रामदेव नमकीन 2 for 149
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179 हाइंस केचप 279
2: केसर मैंगो पल 149 फुल मखाना 245 फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN
2: While stocks last.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade, visit heraldpackaging.com.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे
7: साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 0208574 8410
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
10: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203 7736 333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
13: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी
14: हमारे पति हमको छोड़ दिए
13: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
14: दिल तो टूट पे किया
13: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
15: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती
13: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
17: Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स, इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स एक्सपीरियंस अलग होता है. विजिट स्टार टूर्स.co.uk.

0: listening. Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 0208574 8410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736 333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
5: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
4: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
5: Or sales at leicamedia.co.uk.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803 EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेफको फूड्स।
5: Like a Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
6: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें। Like our radio sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
5: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.